0: आवाज विहीन को आवाज परिवर्तन को संवाहक रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz
1: घर से 46 साउंड शुक्ल पक्ष को नौ।

आयोजक दिदी बहिनी मिडिया हाउस स्टार यति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 9856301।

0: आयोजक दिदी बहिनी मिडिया हाउस स्टार एटी इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 9857301
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज।

0: आयोजक दिदी बहिनी मिडिया हाउस स्टार एति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 98576301
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज।